0: पलक के जादूगर ने जादू का तीर जो छोड़ा, तूता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
2: तो अब राजा कैसे कहता?
1: क्या माँ?

तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। द मेल रिस्पॉन्स, मुकेश सिंगिंग फॉर सुनील दत्त। बाय द वे वेरी क्विकली, शुभा कोट एंड सुनील दत्त आर इन लव विथ ईच अदर, बट सुनील दत्त एन आइडियलिस्टिक टीचर डज नॉट थिंक दैट ही इज रेडी फॉर मैरिज। हिज रिस्पॉन्स इज, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, कुछ और भी है। जुल्फ रुखसार की जन्नत नहीं, भूख और प्यार की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। सुधा मल्होत्रा नॉट ओनली सैंग दिस सॉन्ग बट शी ऑल्सो कंपोज द म्यूजिक। रियल क्विक स्टोरी, दत्ता नायक फेल सिक वाल रिकॉर्डिंग म्यूजिक फॉर दिस मूवी एंड सुधा मल्होत्रा स्टेप्ड अप एंड कंपोज द म्यूजिक फॉर दिस सॉन्ग विच इज़ द most popular song of the movie. Next, two songs come from movie Insaan Jaag Utha, 1959 movie. Madhubala and Sunil Dutt are the leading actress and actor, supported by Nazir Hussain, Bipin Gupta, Madan